ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाई मुत्तहिदा के इनखिला के नोटिफिकेशन पर WHO का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेविड नाबारो को खराज तहसीन पेश करना। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक दवाई याद। बेक्स्टर हेल्थ केयर कारपोरेशन 5% डेक्सट्रोज में क्लेंडमाइसिन इंजेक्शन यू सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को वापस मंगवा रही है। गैलेक्सी 50 मिलीलीटर सिंगल डोज कंटेनर में 900 मिलीग्राम फी 50 ml 12 मिलीग्राम मिली सिर्फ RX C मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फूड प्रोडक्ट याद। प्रिंस बेकरी इनकॉर्पोरेशन प्रिंस इतालवी ब्रेड को वापस बुला रही है। तिल, इतालवी और फ्रांसीसी रोटी, बड़ी, खालिस वजन 12 oz 340 ग्राम, अज्जा अफजुदा ब्लीचड FL। वजह, तिल को जुज्व के बयान में नहीं कहा जाता बल्कि शनाख्त के बयान में जाहिर किया जाता है। नौजायदा को दूध पिलाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैदाइश के बाद पहले घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू करने और पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की तजवीज़ करती है। माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है और मुकम्मल ग़िज़ाइयत फराहम करता है। दिन रात मांग पर खाना खिलाना। अगर खाना खिलाना तकलीफ दे है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो किसी हेल्थ वर्कर से मदद तलब करें। हमल में खतरे की अलामत। हमल में कुछ अलामत को बगैर किसी ताखीर के देखभाल की जरूरत होती है। उनमें अंदाम निहानी से बहुत ज्यादा खून बहना, धुंधली नजर के साथ शदीद सर दर्द, तेज बुखार, पेट में शदीद दर्द या बच्चे का मामूल से बहुत कम हरकत करना शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी हो तो फौरन सेहत की सहूलत पर जाएं। बाकायदगी से कबलस पैदाइश चेकअप में शिरकत से माँ और बच्चे दोनों को महफूज रखने में मदद मिलती है। बचपन की वैक्सीनेशन। वैक्सीन जिस्म को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी संगीन बीमारियों से लड़ने की तरबियत देती हैं। अपने बच्चे की वैक्सीन को शेड्यूल के मुताबिक रखना बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करता है और अगर कोई खुराक छूट गई हो तो कैच अप खुराक दस्तियाब हैं। हिफाजत के लिए वैक्सीन्स का वसी पैमाने पर मुतालिया और निगरानी की जाती है। अपने मकामी क्लिनिक से पूछें कि आपके बच्चे के लिए कौन सी वैक्सीन वाजिबुल अदा हैं। पीने का महफूज पानी। गैर महफूज पानी पीने से असहाल, हैजा और टाइफाइड हो सकता है। अगर पानी गैर महफूज हो सकता है तो उसे रूलिंग बॉयल में उबालकर या साबित शुदा वाटर ट्रीटमेंट या फिल्टर का इस्तेमाल करके उसे महफूज तर बनाएं। इलाज शुदा पानी को साफ ढके हुए बर्तन में जखीरा करें। आपके पानी की हिफाजत आपके पूरे खानदान की हिफाजत करती है। बच्चों में बुखार। बुखार इन्फेक्शन के लिए जिस्म का रदामल है और ये बच्चों में आम है। बच्चे को आरामदेह रखें और काफी मिकदार में सियाल पेश करें। अगर बुखार 2 दिन से ज्यादा रहता है या अगर बच्चा बहुत गनूदगी में है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, गर्दन में अकड़न है, ऐसा खारिश है जो दबाव से खत्म नहीं होता है या औक्षेप है। तनाव से निमटना। तनाव और कम मिजाजी आम है और आपकी जहनी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिस्मानी सेहत की तरह अहमियत रखता है। आसान इकदाम मदद कर सकते हैं। रोजमर्रा का मामूल रखें, उन लोगों से जुड़े रहें जिन पर आप भरोसा करते हैं, फ़आल रहें और अच्छी तरह आराम करें। अगर उदासी, परेशानी या नाउम्मीदी हफ्तों तक रहती है या रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करती है तो हेल्थ वर्कर तक पहुंचना ताकत की अलामत है, कमजोरी नहीं। ये सेहत की मालूमात है, तिब्बी मशवरा नहीं। ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ